थोड़ी वो दिल फिर भी लगती वो सेक्सी, गरीब इलाका बनने का फैंसी, पहनती नहीं कच्चे वो बोलती है पैंटी, सास को पोंछ गूंजी की हैंकी, गुनेगार शहर में नहीं बनने का सेंटी, दिल से मैं था उम्र से जेंस, इलाके के लौंडो को क्लब में नहीं एंट्री, जेब को तू भरा गया दिल को तू एंट्री, थोड़ी वो दिल फिर भी लगती वो सेक्सी, गरीब इलाका बनने का फैंसी, पहनती नहीं कच्चे वो बोलती है पैंटी, सास को पोंछ गूंजी की हैंकी, गुनेगार शहर में नहीं बनने का सेंटी, बनने का सेंटी, गुनेगार शहर में नहीं बनने का सेंटी, बनने का सेंटी, यार बनने का सेंटी। मैन बिस छोड़ दिया, फील करा सेंटीमेंट्स करा हो, वो बोली बेबी आप ओनली चुगो, बोला मैं जानता हूँ सेक्सी।

तू छू सकता नहीं ऐसे धंधे मंडे इस हफ्ते में वो देखना नहीं बंदे शेक्टर घुटने पे हाथ वो बचना नहीं चाहती नहीं गुस्से की बात चार इंच लड़ करे पुस्सी की बात सड़ हो जा हसले साइको सा दिन के आग घर जवाब माइन होगा मेरे आइटम को बोला तू सोच मत पैसों का बात करो प्यार से बेबी बात करो प्यार से सत्रह की नारी वो पूछती मैं कहाँ से

अन्य का सेंट तेरी सैलरी में दिन गया घर से भी नहीं, दिल्ली की पब्लिक अब समझेगी नहीं, समझे तो फर्केगी नहीं, जे इंसानी शरीर ते कुछ शर्मेगी नहीं।

ने वो माल गिन नशे के चक्कर बच्चे रह पर समझे खुद को काटी वक्त है बक्कर गोट बन गई नारी की कुर्बानी बरसे में अपराधी गोट से ताकत उड़ गए गांधी।

छोड़ू सोल मेरे को भागने का दूर, एक दो लोग मेरे को मांगते नहीं क्रू, सर्कल टाइट इधर कुत्ते हैं लूज, दिल्ली शहर कोई बात मेरा नूर, मांगते नहीं दिल इधर मांगते हैं नूर, सुसाइड थॉट मेरा चलता है लूप, सिगरेट पी के मेरे को आता नहीं सूर।

झूठ होंगे सब। हवा में जहर बच्चे पीते बारिश, शैतान शहर बेबी दिल्ली में स्वागत। वो पैसे नहीं है खाने को, भूख मेरी ताकत, बीट्स मेरी दावत, टंकी में ना पानी तो मैं फ्लो लाती सागर। 17 से 62 खानपुर से खिड़

0: पुलिस यहाँ पे किधर, धंधे चलते सही, कोई गैरों का नहीं फिकर। ये बॉलीवुड के बच्चे ये लोग समझे नहीं गया पिक्चर। नारीवादी दिक्कत क्या बलात्कारी, भाई की राखी बांधना चाहिए सिस्टर। भरोसा है किस पर, पैदा हूँ उस धर्म जिसमें लौंडे पहनते निकर। गेट पे लगे स्वस्तिक, गद्दी पे भी हिटलर। शांति से नाम मारो कलाकार बने किलर। फालतू का नीने की ये लोग शर्म करे पिक कर। पापों की ये बदबू डियोर का ये तर। कड़वी मेरी बोली में नहीं डालता कोई मिक्सर। नाले में जो लाश उसकी नसों में थी लिखकर। करेंगे जांच कपड़ों के हिसाब, छपेगा नहीं खबर, सब पे डलता फिल्टर। ये आईजी का समाज या बनता नहीं है बीफ, ये है दिल्ली मेरी जान।
1: मैं जहर, बच्चे पीते बारिश।

longer. Tuck a rousey, no boner. No fake friends, I'm a loner. Dum ghote mera diamond choker. Bram toote me go samjhe the joker. Spash nazar ek mahina sober. Mood tode 1-2 match over. अंदर से बीच में कुछ दिख रहा तेरा लिंग बिच्छू की नारी हम वो पीती मेरा स्टिंग

वन आर के पोचा नाम हर स्टेट तू है ना मर्द मालूम है दल दल ने नकल बाज तू है असल ने साफ दिखे फेक मेरे को बचपन से फेक लॉन्ड कर गस जे

पूछे बंदियां भी फेक, बंदों की छोड़नारी रंडियां भी फेक। तेरे दिल्ली को शेप, तेरी बिल्ली ना शेप, जैसे बच्चे अगवा दे।

ना मैं जाऊं पहन रही थी जींस टॉप दिलवा दिया सूट कपड़ा तो कपड़ा मैं तोहफे से रूट जब गांड इनकी फटती तो बोलते ये झूठ मैं डीएचएच सुन लेता वॉल्यूम जब म्यूट आराम यू बचपन से बोलियो ना क्यूट कुपोषण के आदि दुख पोलियो के टूट वो साउथ दिल्ली बैठी थी मेकअप में भूत वो लाइन

0: ने जॉइंट पे थी डैब हनी, यहाँ पे मुंबर चीने ट्रैप मनी, पैसे चीना ना कोई ब्लैक मनी, और रंडी के बैड हूँ और रोज़ यूँ ना कोई ये बैड मनी।
1: फेक लॉन्ड कर गस